0: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय श्री देवेश्वर महादेव की जय स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर पंहा स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।

0: सुनो
1: सुना जी।
0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय,
1: जय
0: श्री सतगुरुदेव की जय।

0: श्री नारायण भगवान की
1: जय।
0: रेपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: श्री शा गुरु जी महामंडल सर परमान स्वामी महेश्वर जी गुरुदेव की
2: जय।
0: धन धन हो साय बजाओ।

श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री देव पुरुष महादेव की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अलक पुरुष महादेव की जय। श्री शिवानंद जी महाराज।

0: भगवान की जय। श्री श्रीदेव पुरी समहदेव की जय।
1: ओम बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय।

श्री दीप नारायण भगवान की। देवादिदेव देवपुरी महादेव की। सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। अलखपुरी जी महादेव की। सत्य सनातन धर्म की।

0: होली श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देवपुरी जी महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: Hariom, ja by som vás chcela poprosiť, keď sa vraciate od Vishva Gurudžiho, aby ste neprechádzali popred kamery. Nekrižujte popred kamery, kľudne choďte poza Swamijiho. I would like to ask you, when you return to your place, please don't cross, don't walk in front of the cameras. You don't hesitate to go behind Vishva Guruji. Thank you. Ďakujem.

बोली श्री दीप नरयाम भगवान की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। विश्व गुरु श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगिराज परमहंस श्री स्वामी माहेश्वर

ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यं ओम शांति शांति शांति। दीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। माधव कृष्ण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस, सैल्यूटेशन टू द कॉस्मिक लाइट, एडोरेशन टू द डिवाइन मास्टर्स and welcome all of you. Nice to be again in the Vancouver, and I enjoy to go to the Stanley Park to take the lot of oxygen. Vancouver as well as Vienna have the same

भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुरी जी महादेव, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान, दीप नारायण भगवान, सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।

0: सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरीषा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम हंस स्वामी महाशयानंद पुरी जी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side.
2: True.
0: Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You here?
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

श्री श्री देव पुरी समादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन ओम शांति शांति